0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हर पल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ, हर संकल्प में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर आशय शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। कोई भी सफलता होती है में

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Sunday.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल चाय संसार में, चाय भ्रमण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार, मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसकी 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसा तो नहीं किया जाता है, ये नहीं करना होता है, पहले ही बेचारा संस्कार के वश है, कमजोर है, तो वो नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत तो परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप भिखारी हो, आप गंदे हो, आप ये हो का, आपको स्मृति दिलाई, आप आत्मा हो। और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समृद्धि आई, परिवर्तन किया। हिम्मत से समृद्धि दिलाओ, समृद्धि समृद्धि सुते ही दिलाएंगे। समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो आज से सारे दिन में बार बार कंसीडर

0: recipe. Ek minute nikal. Is abhyas ko pakka kar de.
1: Aap sun rahe hain Shiva Radio.
2: सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Uncle Ben, I'm

समृद्धि में चलते हैं। Oh.

0: Jangan दिवस मनाते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है

अपने को ब्रह्मा कुमार
सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: फॉलो करना तो सहज है ना, जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त हो जाता और अनुभव है सबको कि फिर रद्द
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है। पर ही चीज को अपना बना के रखा है ना, कोई पराई चीज को अपने पास संभाल के रखे, छिपा के रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखुर से कहते हैं, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समापति समारोह करेंगे, करेंगे, करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो, जहां मन होगा ना वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरी की चीज है, वो नहीं रखनी है। आप तो मर्जीवा बन गए ना, आपकी भ्रमण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

essay. Sadness.

up, me, bro?

gioco. Papamela. Osso saber dice. Beats.

0: कभी मेहनत कभी मोहब्बत। दोनों में रहते लेकिन जो सने में
1: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन। ओ दादी, आपका यही कथन

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Tiens.

matto podcast.

chaotic. अपने को लक्ष्य रख।

don't know.

be you.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

अनेक जन्म की प्रलोभन बनानी तो आजकल बाप दादा ने देखा है, अशुद्ध संकल्प कम चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए। क्योंकि संगम योग के

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Jesus.

परिवर्तन करता। ऐसे ही मास्टर्स

अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा को शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। अभी मनसा सेवा जैसे वाचा सेवा का विस्तार किए, वैसे मनसा

इस बातों से मुक्ति तो दे।

Siroco. Don Bayajit. Sightseeing.

0: साइट सीन देखने के लिए साकी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हंसी की ये बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा देख करके बाप को रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते, कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या है, क्या करे, मेरे संस्कार ऐसे। संस्कार के ऊपर ही कह के अपने को हल्का कर देते, लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो कहते हो आप कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से है? जिसको आज आप मेरा कहती हो वो मेरा है या रावण का है? किसका है? तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं, यह हवा में किचरा आ गया और किया जाता है ना कभी, तो ये रावण की चीज आपके पास आ गई, तो उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा है, है मेरा है, है नहीं है ना? तो अभी कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार क्या। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार, आत्माभिमानी में ये संस्कार नहीं है, है नहीं है ना? तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना, मेरा संस्कार करके कह के अल्लाह पहले हो जाते, कहेंगे भाव नहीं है संस्कार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

मन आंगन में प्रेम की किरणें पल पल होता अपने पन का एहसास। अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा सा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक बार बाप दादा इशारा देते कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो, आत्मा के रूप में देखते भी है, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, या जो मिक्स संस्कार है वो भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो कि वर्तमान संस्कार भी आते हैं सब? बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार उस रूप में देखो, कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वो नहीं हो। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में वो भी आ जाते हैं वर्तमान संस्कार, वो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती, तो आत्मा ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा थी। तो ये जो अभी संगठन में रुकावट आती है वो रुकावट खत्म हो जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जीवन से हिम्मत हार चुकी है। अब भी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए, नाउम्मीद हो गए। It's

सत्संग का लाभ समाप्त कर एक सेकंड में पाप के साथ परमधाम में ऊंचे स्थान ऊंचे ऊंचा पाप उनके साथ ऊंचे स्थिति में बैठ जाओ और पाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप भी फरिश्ता ड्रेस जैसे भिन्न भिन्न ड्रेस बदली करते हो ना, वैसे बीच बीच में सारे दिन में ऐसे फरिश्ता ड्रेस बदली करके टेस्ट लो ये भी, बस बाप दादा इमर्ज करो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इमर्ज करो, मैं फरिश्ते रूप में हूँ। वस्त्र बदली किया, साधारण से फरिश्ते रूप की ड्रेस पहनी और बाप दादा कभी ज्ञान के कभी शक्तियों के कभी गुणों के रंग डाल रहे फरिश्ता ड्रेस पे। फरिश्ता बन के 5-10 मिनट अनुभव करो, फिर वस्त्र बदली कर दो। कर्म योगी है ना, तो ये दिन में जब भी टाइम मिले फरिश्ते की ड्रेस पहन लो और बाप द्वारा ये रंग लग रहे हैं, ये अनुभव अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना फरिश्ता ड्रेस की, तो ड्रेस पहनने से नशा चलेगा और मदद मिलेगी फरिश्ता बनने में। तो होली की ये सौगात बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं। ड्रेस पहनते ट्रेल करते जाना, बोलना नहीं, फरिश्ता ड्रेस सौगात में दे रहे हैं, होली की सौगात। तो बीच बीच में ये अभ्यास करना, सहज है ना, ड्रेस बदलना तो आता है ना, आता है ना। जैसे ये ड्रेस बदलते हो ना, रोज बदलते हो ना, तो फरिश्ता ड्रेस भी बदल के देखो कितनी सुंदर, कितनी चमकती हुई है। सुना, ये ड्रिल भूलना नहीं, वस्त्र बदली करना, दिन में जितना वार फरिश्ता ड्रेस में बैठ सको चाहे 3 मिनट बैठो, लेकिन बैठो जरूर, बदली करो जरूर, अभी से संस्कार डालो फरिश्ता बनने के बिना देवता बन नहीं सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अगर आपका व्यर्थ समय और संकल्प बच गया तो आपका दिन कैसे बीतेगा? सदा खुश नसीब और खुश निमा बन जाए तो अभी संकल्प को अमृत वेले बाप दादा से मिलन मना नहीं किया।

birthday par vaada kiya. Wo vaada niba rahi hai ye apne aap se jeekar. चाहते तो सभी है, बाप दादा आज शिकले देख रहे हैं, चाहते हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन ये वेस्ट आ जाता है ना, तो बाप से किया हुआ वायदा भी बुला देते. Best kadam. Ek minute. A baby. Ek minute. Powerful. Atma ban. Santa.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सिक्किया सिर्फ सिक्किया नहीं तो, अगर सिक्किया देती भी है, देने पड़ते भी है, लेकिन किम्या और सिक्किया, किम्या रूप बन के सिक्किया दो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। मर्सीफुल रूप अवश्य सिक्किया का फल दिखाएंगे। देखो आजकल साइंस वाले भी पहले ऑपरेशन करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं, टिंचर भी लगाते हैं, पहले फूंक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर सिक्किया दो, तो प्रभाव डालेंगे। नहीं तो क्या होता है, आप सिक्किया देने लगते हो, वो पहले ही आपसे ज्यादा सिक्किया के, तो सिक्किया सिक्किया की सिक्किया नहीं मानता। जो पॉइंट आप देंगे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट्स होंगे। इसलिए कि प्या और सी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

soir.

Tanto.

समय सफलता

सभ्यात्मय पूरा समय स्वस्थ रहते, बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्वात्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना उसका फल स्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में समझदार शक्तिवान बन जाते हैं, जो वहां कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही समझदार

yapmıştı. Ve şeştaram sata. Raci sata. Donay ve şeş. Skull.

0: 1995 आपकी चरम मूर्ति का पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं? सर्वगुण संपन्न तो इस समय के सफलता का प्रलाप स्वतः ही प्राप्त हो जाती, इसलिए चेक करो खजाने मिले खजानों से संपन्न हुए लेकिन स्वप्रत व विश्वप्रत कितना सफल किया।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ब्रह्मा बाप ने हर बच्चे प्रेत चाहे जानते थे के ऊपर

0: रेम और कल्याण की दृष्टि से उनके भी सहयोगी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Shut up। जो समझते हैं दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। अच्छा आप घड़ी घड़ी निकाल लेंगे ना तो निकल जाएंगे, रख नहीं दो अंदर क्या करें कैसे करें, निकलता नहीं है ये, नहीं निकालना ही है तो दृढ़ संकल्प करेंगे। अभी हाथ उठाओ जो करेगा, मन से हाथ उठाना, पैर से नहीं उठाना, मन से आप नहीं उठा रहे हैं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा, जो बाप दादा ने समय पर तो समय प्लान दिया है, वो बच्चों ने बड़े विधि उत्साह से किया है, कर रहे हैं। इसके बाप दादा सभी बच्चों को

0: अपने एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहा है, अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे। बाप को रहमत है, बच्चों का दुख अशांति का वायुमंडल देकर, और बाप और आप जानते हो कि ये तो अति में जा नहीं, बिना अति के अंत नहीं होता। ऐसे समय पर आत्माओं को ये अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा। आप सभी भी यही पूछते हो ना कि ये पाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी, तो ब्रह्मा कुमारियों तक पहुंचिए। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन? ब्रह्मा कुमारियों का, ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन? अभी समय को समीप लाने का समापति करनी है ना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर देने का दिवस आ जाता है।

साथी है श्रम।

Junkie. Sheesh.

सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बस

ट्रिल करो, अभी अभी कर।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: I'm

अच्छा।

Be my love.

Шарат кит на сети.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Thank you.

0: परिवर्तन का अटेंशन रखने वाली हूं। तो ये वृद्धि करो, एक एक की बातों को सुनो और उनको पंख लगाओ मगुत सागी। जो बाप दादा को निर्विघ्न से डर का समाचार।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने कई बार इशारा दिया कि समय अचानक और नासिक आवश्यक है। कितना भी बिजी हो लेकिन बिजी होते हुए भी एक सेकंड समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे। तो अति हलचल समय अचल कैसे रहेंगे? एक दो मिनट निकाल के भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मा की स्थिति द्वारा इस अभ्यास को नेचुरल स्थिति बन जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

Yoga che abbias cartewe manaco e cagar carne. जितना समय जाओ, जैसे जाओ, वैसे अभी अभी माना

मेरा बाबा, मीठा बाबा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब

0: ऊपर से जाना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ವಿಶ್ವ ಸೇವಾದಾರಿ Yuck.

चत्वारम्।

आगे बढ़ेंगे।

अपने भाई बहनों के ऊपर। तरस नहीं पड़ता क्या प्यासी आत्माओं की? प्यास नहीं बुझाएंगे। कानों में आवाज नहीं आता।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

genere sono sto ciore. Lekin jab ek parivar prabhu parivar lokik parivar nahi prabhu parivar prabhu parivar ka arti hai ek to me shubh bhavna kalyan ki ek to me yehi sankalp rahe सभी साथ साथ एक दो को आगे बढ़ाते मुक्ति का गेट खोल के साथ जाने इस

0: समझते हैं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लोग एक काम क्यों करें, ये तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना। लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य के निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो, लौकिक पन नहीं हो। अलौकिक पन है लौकिक कार्य में भी समर्पण। लौकिक कार्य छोड़ के समर्पण समारोह मनाना है ये बात नहीं। नहीं तो फिर थी कैसे होगी। इसीलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो तो ऐसी आत्माओं को जो निमित्त लौकिक समझती है और रहती अलौकिकता में, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक। समझा। इसीलिए ये नहीं कहना दादी हम कुछ रहो नहीं कहूँ। और ये डबल प्रालंबित बना रहे आवश्यकता। अगर समझेंगे तो आप बीच रहेंगे। आपको क्या जिम्मेवार दिया है, आप अपने लौकिकता में अलौकिकता लाओ। थको नहीं, थक जाती है। लौकिक काम करके आती है, क्या करें। नहीं, खुशी खुशी में दोनों निभाओ, क्योंकि दिखा गया है कि डबल विदेशी आत्माओं में कार्य दोनों तरफ करने की शक्ति है। तो अपनी शक्ति को कार्य में लगाओ। कब छोड़ेंगे, क्या होगा, ये पाप और दादी या जो निमित्त है ना उनके ऊपर छोड़ दो, आप नहीं सोचो। कौन कौन है जो लौकिक कार्य भी करते और सेंटर भी संभालते, वाद रम लौकिक कार्य भी करते हैं और सेवा के केंद्र भी संभालते। हाँ, उठाओ हाथ। अच्छा, बहुत अच्छा। नंबर आप लोगों को वैसे ही मिलेंगे, जो सारा धन सेवा करती है उन्हों जितना ही मिलेगा। सिर्फ ट्रस्टी होगी करना, मैं बन में नहीं आना, मैं इतना काम करती हूँ, मैं बन नहीं करा बना हार करा रहे। इंस्ट्रूमेंट पावर के आधार पर चल।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कहीं कहते हैं कि योग ज्ञान बस बहुत अच्छा लगता है, बस अच्छा है ज्ञान, अच्छे है कहेंगे ज्ञान यूज करते हो, अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन कर्म मिलाते हो ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा कहना नहीं, ज्ञान का अर्थ है समझता जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है, समझ

0: 7 or Dharna Swarup ki nishani hai. Sada Swayam bhi double light.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बच्चों को देख रहे

Sydney.

zapaście. Nick.

0: सब स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जी

Meme.

见。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: हैप्पी की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट पढ़ते नहीं है और स्टूडेंट रेगुलर सेवा के उमंग उत्साह में नहीं रहे। क्लास करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह में नहीं है। तो ये रिजल्ट है पालना की। मुबारक।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: फरिश्ता स्वरूप में रहना है, इसको ही कहा जाता है तीव्र पुरुष।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सांस करने में घबराओ, क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम साथ खुशी से

0: शब्द खत्म कर दो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दातापन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते, और प्यार की निशानी है कोई पांव का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है हर आत्मा के वृद्ध कैसी भी है, कोई भी है, लेकिन अपने शुभ भावना से शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना करना भाव नहीं आवे, ये तो बदलने वाले नहीं, ये तो है ही ऐसे। नहीं सुनाया ना, अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपने शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। आप सहयोगी बनो, किसे सिर्फ शिक्षा से नहीं, आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभावना के कोई नहीं सुन सकता, ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना रहम दिल ये सहज काम करता है। ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, मालूम है, लेकिन उसी बच्चे को शिक्षा भी तरीके से युक्ति से देगा, लेकिन फिर उसको बहुत प्यार भी करेगा, जिससे वो समझ जाते थे तो पापा का प्यार है, और प्यार में गलती महसूस था कि शक्ति उसमें आ जाती।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहाँ ये टीवी तो सिर्फ पैर का शिकल दिखाती है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देख तो खुश हो जाती है, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे। जो आपका एक गीत है ना, शक्तियां आ गई, सब शिव की शक्तियां है, पांडव भी शक्ति। बच्चों को इस समय बाप दादा के आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे ये स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त कर दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सर्कमस्टेंसेस ये उसको नहीं देखो, लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला होना वहाँ अपने मन को दिल को किनारे कर। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान है। क्या पहाड़ से मात्र टकराना है? देखना क्या स्वयं किनारा कर लो या उड़ती कला से उस झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चलते तो पहाड़ भी आपको एकदम सहज अनुभव। मुझे बनना है अमृत वेले से, ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी है झमेले की दुनिया, झमेले तो आएंगे, आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है तो आपकी दुनिया ही वो है तो वही आएंगे ना। आप एमएड का या लंदन जाएंगे क्या पेपर देने के लिए? सिंटर झमेला नहीं आवे ये नहीं सोच, झमेला मुक्त बनना है ये सोच।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा सभी को ये देखना चाहते हैं, अभी अभी देखना चाहते हैं कि एक सेकंड में स्वराज के सीट पर कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर के संस्कार में इमर्ज रूप से सेकंड में बैठ सकते हैं। तो एक सेकंड में दो तीन मिनट के लिए राजकारी की सीट पर सेट

0: अच्छा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कम से कम हर एक अपना वेला तो मन

कोशिश अच्छी कर रहे हो, अमृत वेले को महत्व देते हो, लेकिन आगे भी जो अमृत वेले में कभी कभी हो वो आगे बढ़ना, क्योंकि अमृत वेला दिन का आरंभ है, उसमें जरूर

सभी खुश है कि बीच में माया भी जान से लेती है। खुशी नहीं कमाना, माया आवे भी तो फौरन बाप को सुना के चेंज हो जाए। अगर बाप को नहीं पहुंच सको तो अपने निमित परों को जरूर सुनाओ। एक दिन से बनाना नहीं तो आदत पड़ जाए। ये अमृत वेले का अमृत पीना आवश्यक है। तो अवश्य इस समय

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जन्म हुआ नए जन्म में पुरानी नेचर पुराना स्वभाव कहां से इमर्ज होते हैं। तुम पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है थोड़ा मर रही है क्या? ब्रह्मांड जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वो ब्रह्मांडों का कदम। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं, श्रेष्ठ भाग्य उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता। इस बारी मुक्ति वर्ष बना रही हो ना, बोलो जाता है। युक्ति युक्त बोल, साधारण बोल भी Wow.

समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन के सर्व गुणों का खजाना, जमा नहीं किया तो फिर ऐसा जमा करने का समय मिलना सहज नहीं होगा। सारे दिन में अपने इन एक एक खजाने का अकाउंट चेक करूं, जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो ना, इतना जमा है, ऐसे हर खजाने का अकाउंट जमा करो, चेक करो, सर्व खजाने चाहिए। अगर पास विद आनर बनने चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा हुए खाते से प्रारंभ भोग सको। अभी समय के टूलेट की घंटी नहीं बची, लेकिन बजने वाली दिन और डेट नहीं बताएंगे। अचानक ही आउट होगा टू लेट, फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे, कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो, जमा करो, जमा करो। क्यों? आपका अभी भी टाइटल है सर्व शक्तिवान, शक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिवान भविष्य भी है, सर्व
जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही, एक एक खजाने का गुण और शक्ति

Swami. Sab ready hai. Chote bache bhi hai. Teachers bhi hai. Kyunki teachers hi to samarpan hui hai. Kumariyan bhi hai. Pravrti wale bhi hai. Sab ready hai. सभी को चांस दिया है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफी समय से अरिजी थी, तीना बचे, हमको कब चांस मिलेगा मिलने, तो अच्छा हुआ। कौन सा देवता बनेंगे?

0: बच्चों से रौनक होती है। तो आपकी रौनक को देख के सभी खुश हो रहे हैं। वाह बच्चे वाह। लेकिन एक बात याद रखना, बच्चे ब्रह्मांड आत्माएं बच्चे, तो जो परों का भाग्य है ना, वो बच्चों का भी भाग्य है। इसलिए बाप के साथ को कभी नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखा

浪漫。

Yes.

Aeropuerto.

night.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

नॉट गुड।

Peace.

可以的。

che se bio shit it guys I'm shit.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेंगे ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वो अपना काम तो करेंगे ना, लेकिन हर खेल ड्रामा के खेल में ये भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना, परिस्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति को प्रभाव नहीं डाल और जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं है, बुझाते हैं। तो आप सब भी मानक के परेशान जाने वाले। देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता है। गुजरात में आओ, अबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वो स्वतंत्र है। सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को मानक के लाइन को क्लियर रखना। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उनकी वायरलेस है आपकी वॉइसलेस बुद्धि। क्या करना है, क्या होना है, ही सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके पाँव वहीं चलेंगे जहाँ सेफ्टी होगी, और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन असलम घर आपका है, डरना नहीं, कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अब तो सब कुछ होना है, डरना नहीं, खेल परिवर्तन होना है, ना विनाश नहीं, परिवर्तन होना, सब में वैराग वृद्धि उत्पन्न होनी है, रहम दिल पर सब पर शक्तियों द्वारा सकाश दे, रहम करो, समझा, समझा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना पाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और पाप के लिए है या परम आत्मा के लिए है? आत्मा है, नंबर वन आत्मा है तो है। स्वयं बच्चों के याद के पाप रह ही नहीं सकता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये सब साधन आप बच्चों के सेवा के सहयोग के लिए निकले। ब्रह्मा बाप जब समाचार सुनते हैं, ये ईमेल है, ये है, खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, इतना सहज साधन। ब्रह्मा बाप को भी साकार में नहीं मिला, लेकिन बच्चों के पास खुश होते। सब सेवा का साधन समझ के यूज करना, सेवा के लिए साधन, क्योंकि विश्व कल्याण करना है तो ये भी साधन सहयोग देते। साधनों के वश नहीं होना, लेकिन साधन को सेवा में यूज करना। ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले। हाथ में भी कोई साधन नहीं थे इतने, और अंत में भी नहीं रहेंगे। ये अभी के लिए सेवा बनाने के लिए, लेकिन साधन है साधना करने वाले आप। साधन के पीछे साधना कम नहीं हो। बाकी बाप दादा खुश होते हैं, सीन भी देखते हैं बच्चों की फटाफट कर रही है। ऑफिस काफी चक्कर लगाते हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बहुत बिजी रहती है, ये हंसती है। अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना। जैसे एक सेकंड में साधन यूज करते हो, ऐसे ही बीच बीच में कुछ समय साधना के बिना का। सेकंड भी निकालो, अभी साधन पर हाथ है, और अभी अभी एक सेकंड साधना बीच बीच में अभ्यास करो। जैसे साधनों में जितनी प्रैक्टिस करते हो

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

कैसे करूं, क्या करूं, नहीं।

Let the ship

Sıra fırça.

ще бути. Не ще.

जन्म

अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रोड़ियां सुनते हैं, रोड़ियां बहुत हिम्मत की करते हो। Check.

So

0: Ramzor Sangalap emerge nahi karo.
1: Set up.

इस अंधकार से Shut up.

Siete. Ei. Sim.

0: Sharako.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

il sindaco. लास्ट बच्चे से भी प्यार

0: Jacobing, Pop Dada, Shejate, Xadjel, Red Ranger, Piche Piche, Nai Ranger.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हर एक वर्गीकरण से ऐसे कोई स्पीकर तैयार हो, आप टॉपिक देते हो, उस पर भाषण करते हैं, नहीं खुद मंगावे। मुझे ये करना है, ऐसा कुछ प्लान बना।

0: मंडल में फैल वेस्ट अभी भी है, इसलिए मनसा द्वारा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थ, सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है, मेहनत का काम मुश्किल होता है ना तो टाइम लगता है। तो कौन हो सभी सहज पुरुषार्थ बोलो। याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सोने समय अपने पति को बाप दादा को पोता मिल Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखो, निश्चय का पर्तक्य परवान है, रूहानी नशा
2: चेहरे में।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से और कोई लक्ष्य

ऐसे समय पर

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Sss.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Suck.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो हो नहीं है, पहले से पता है ये होना, लेकिन बाप समान रिश्ता बनना ही है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना, और बाप दादा ने पहले ही सुना है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी और साथ में रोज का हाल चाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वो स्मृति सहयोग देती। धर्म राजपुरी के लिए जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्म राजपुरी से बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में अपने को जो बाप की आश है कि चेहरा दिखाई दे, झलक दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके देखो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप की मदद तो है लेकिन समय पर ले।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी भी किसी से भी बात करो ना, मुस्कुराओ जरूर। आपके मुस्कुराने से उसका आधा दुख तो दूर हो जाएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। किसी से भी बोलो, साथी से, ब्राह्मण से, चाहे अज्ञानी से, मुस्कुराता चेहरा रुए गुलाब। सीरियस हो के नहीं बोलो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं। मुस्कुरा के बोलो। मुस्कुराने का स्टॉक
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: उससे ज्यादा

It's Jesse.

cose piardo. Sick.

Sayong.

0: isa anubaw ko. Practical Melo.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सबको बिंदु रूप में देखना है। जब देखेंगे बिंदु तो और कोई भी संकल्प नहीं चले। सेवा का अटेंशन रखना इतने दुखी आत्माओं को चिल्ला रही है। उनों को गिरना देने की सेवा में भी सेवा।

0: Let's see.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

las estetica. Ano po ka rin? Abirisal.

Cathedral. जब सीट होती है तो आप सीट नहीं होते, सीट नहीं है तो आप सीट होते। तो बिना बिना श्रेष्ठ स्थितियों के सीट पर सीट।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कुछ भी हो, आपका काम है परों तक पहुंचाना, पहुंचाया अर्थात दिल से निकाला, आपकी जिम्मेवारी पूरी। अगर आप समझते हो कि कुछ हो नहीं रहा है, तो आपका इसमें पाप नहीं बनेगा, जो जिम्मेवार है वो ढोका बनेगा। आप निश्चिंत
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को अशांति और

जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो।

सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है। ये स्मृति रहती है, सारे विश्व की आत्माओं को सेंटर्स की सेवा।

Yes.

One day.

0: डियरेस्ट, और डियरेस्ट बच्चा बन जाता, इसलिए बाप की दुआएं सुतह प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बेटी करवा ले, अब ऐसी तैयारी कराओ करो जो सभी जैसे बाप दादा ने कहा, बेफिक्र बात है, फिक्र नहीं तो बीमारी भी नहीं। तो ऐसा प्लान ऐसी तो

0: सभी के मन में मेरा बाबा बिठा दो तो ये दवाई हो जाए। अच्छा बैठ जाओ, बहुत अच्छा सेवा कर रही है, करते चलो। विजय तो आपके साथ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सच्चा हर्ष सारी दुनिया

सर्व आत्माओं के प्रति सेवादारी और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी है ना, बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन सेवा में सदा उपस्थित रहते सदा सेवादारी हूँ। सेवा सिर्फ 4 घंटे

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं माया, अकेले करने की कोशिश

Sun.

nichts, warum?

बचाने के लिए माया अपने तरफ आकर्षित कर देती और बच्चे भी खजाना नहीं है, रावण के खजाने

George Anthony.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बीमारी फिर से आ जाती। ऐसी दवाई दो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो, वो है मेडिटेशन।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इसका

biết nước bị này cho sợ ta. I had to say.

give to me. But 2 months

Oh,

残念。おばぶれすぎた。さつは。ジョン。ブラッマーナ。さつはあるけ。さんばっきりぴゃり。Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृद्धियों
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं, ये नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछ के नहीं आएगा कहाँ तैयार हो। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्रह्मा कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, समन संपर्क हुआ, बदल गए। अचानक ही हुए ना, सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे, सोचा था। अचानक हो गया ना, तो परिवर्तन भी अचानक होना। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे 2000 तो सोचा था वो भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी।

0: कोशिश करेंगी, फिर अचानक विनाश होगा, फिर नहीं कहना बाप दादा ने सुना ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या, इसलिए पहले ही सुना देते हैं। अल्लाह पहले कभी नहीं बदलना किसी भी बात में, चार सब्जेक्ट में अलर्ट, अभी भी कुछ हो जाए अलर्ट, उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे, अभी जमा कर लो जितने चाहिए जैसी चाहिए सबको। खुली छुट्टी है, खुले भंडार है, जितनी शक्ति चाहिए जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज सम्राट बाप अपने स्मृति स्वरूप सम्राट स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष
2: कुछ भी
1: विशेष स्मृति दिवस में अर्थात शनि के दिन में शनि में समय रहे ऐसे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yes.

कोई एग्जाम्पल निकलने में।

खुशी है कि समय से पहले तो आ गई।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: jalan. Orjeri parti gede jadi. Apa sampean usah? Nomor fan geni waloko.
1: Yeah.
0: और अलौकिक है कि साधारण समझते हैं, ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। काम की विशेषता नहीं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करते हैं, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये तो बहुत है। एक बुक निकलता है ना जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है, कितनों का नाम आता है, बहुत होते हैं। इसने ये विशेषता की, ये इसने विशेषता की, नाम आ गए। लेकिन जिन्होंने भी उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपके प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखे। ये अभी आवाज नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में चाहे कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि ये साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मुहूर्त है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Oh, shit.

Jesus, amen. Nasi kota jeng.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं पाप का और पाप मेरा, ये निरंतर विजय का आधार। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा मेरे के ऊपर अधिकार होता है। मेरा बाबा निश्चय बुद्धि आत्मा सदाधिकारी सफलता की विजय।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बच्चों को

कुछ

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो आज से देखो सभी हाथ उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं, पीछे वाले हाथ हिलाओ। Sweet.

विश्व के परिवर्तन के पहले जहां भी है उस

Abby. Oh, shit.

ちょっと。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये संगम युग की सौगात, बाप और बच्चों का मिलन, सारे कल्प में एक ही बार होते। संगम युग में बार बार होती है, लेकिन एक ही संगम युग में होती है। और जीवन कितनी सरल है, कोई हठ योग क्रिया विरिया नहीं करनी है, मेरा बाबा बस। अब मेरा तो भूलता मुश्किल ही है, बाप को मेरा बना दिया तो भूलने की मेहनत खत्म। छोटी सी चीज भी मेरी होती है तो कितनी याद रहती है। बाप को भी हर बच्चा प्यारा है, ऐसे नहीं इतने बच्चे पता नहीं मुझे बाबा याद करते हैं या नहीं, लेकिन नहीं, बाप विश्व का पिता है, उसमें भी मुख्य संबंध में कौन है, आप बच्चे। एक है कितना प्यारा है, आप कहते हैं प्यारा बाबा, बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे। एक एक बच्चा बाप दादा के दिल का प्यार है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Mama.

are suddenly

Shh.

0: Ya di nishemi paso hona hai watin me to me number one hona hai iske liye vinash ki tiyariya hote bhi abhi ruka hua hai prakriti bhi आती प्रकृति भी कहती अब बहुत बोझ हो गए प्रकृति भी बोझ से छूटने चाहती माया भी कहती कि मैं जानती हूं जाने वाला है लेकिन ब्रह्मांड परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी बात में मेरे साथी बन जाते बिठा देते मेरे को परसेंट में तो समय भी रुक रहा है बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी है अब बताओ आर्डर करें बच्चे अगर ये रेडी नहीं है माया और प्रकृति को आर्डर करें हाथ उठाओ तैयार हो ऐसे नहीं हाथ उठाओ पेपर आएगा पेपर शिवा रेडी
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Peace.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जैसे आप बाप को याद करने के बिना नहीं रह सकते, वैसे बाप भी बच्चों को याद करने

बच्चों का कभी भी कोई बात हो जाती है तो वो भी भूलता नहीं है, बाप के पास पहुंचता है।

बिल्कुल सत्य नहीं, क्योंकि बाप और बच्चों का ऐसा दिल का नाता है जो दिल

0: Irene y Satán. Pachemi Irene.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: DJ Frizzy. Jesse ye stol kar bedriya hath bahwa apne control me rehte hain aise man bote sanskar जब जाए जैसे जाए रोलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर हो अभी देखने में संस्कार मेरी है बुद्धि मेरी है तो कंट्रोलिंग पावर रोलिंग पावर नंबर
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Sıra.

Ici.

Wishes, bye.

Seća butika.

madre.

Amerika.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक स्वयं का स्वभाव, दूसरा समय का। मैं तो आप साधारण नहीं हो, पूर्वजो
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: धरनी पर बैठ

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बन जाऊंगा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी बात तो समा देना अंदर मन में, बाप दादा को देख करके समा देना। एक शांत शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति। अगर ये दोनों विशेष इसको इमर्ज रखना, शांत शक्ति को भी और समाने की शक्ति को भी। ऐसे नहीं समाना जो बीमार हो जाओ, ऐसे नहीं। कहीं अंदर समाने की कोशिश करती है ना तो बीमार हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे नहीं समाना, समाने की शक्ति।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: प्रोग्राम तो बड़े की है, उसकी तो मुबारक है, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वो कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000, लेकिन कम से कम बाप दादा इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसका रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो, क्योंकि एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं उनका परिचय तो रहता ही है, तो उनको फिर से समय बुलाना चाहिए। ऐसे नहीं काम ने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे बिना सेंटर पर जाए। किस देश का भी हो वहां जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए, ठीक है ना? वो तो सकता है ना, थोड़ा टेंशन देंगे, निकल आएंगे 108 तो कुछ भी नहीं, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे, कौन कौन कितने निकालते हैं वो बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखने चाहते। कितने भी निकालो जरूर, क्या है प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क वो थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है, और निकालना कोई मुश्किल नहीं है कि बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा यही चाहते हैं, आप थोड़े समय में के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकती है कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, बनेंगे प्रारब्ध वाले बनेंगे।

sé. Lian. Le te piro. Le quedó.

Esaú, né? Esaú.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पाप एक है, एक ही समय पर देते हैं, लेकिन जमा करने में तीन प्रकार के देंगे। एक बच्चे साधन समय पर कार्य में

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: स्वरूप

0: बिना सीट पर सीट होते कोई किसका नहीं मानता, तो करावन हार आत्माओं, ये कर्म इंद्रिया करण हार है, करावन हार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप शुरू में ये अभ्यास किया जो रोज समापति समय इन कर्म इंद्रियों की राजदरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वो डायरी देखी होंगी, तो रोज समाचार लेते थे, देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी किया, तो आपको भी करावन हार मालिक समझ, क्योंकि आत्मा राजा है। ये कर्म इंद्रिया साथी है, तो ये चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष चेक करने से कर्म इंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा, तो आत्मा राजा बन चेक करो, नहीं तो देखा गया है कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते, उसका कारण सी अपने स्वमान सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सीट पर बैठ
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एकाकर कर सकते हो।

नजदीक

0: सेकंड में क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखो बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बिंदी तो बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे, सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है बिंदू की?

sad.

0: कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है, बिंदु। इसलिए तीन बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल के दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तो किसका है, पैसा। पैसे का मैं तो है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बन जाएगा ना, दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा, तीसरी लगाओ तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल। और करण करावनार भी बिंदु है, तो सर्व तरफ किसका मैदा हुआ, बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो, और विस्तार में नहीं जाओ, याद कर सकते हैं। बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ, बस ये पुरुषार्थ। जब कोई समस्या आती है बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क इतना टेढ़ा होता है, देखो लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है और बिंदु कितना सहज है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

terror. Sandeş Ponte. Fer ab kitche me vari puri. Aise nahi ho. Ki choti. किसी को भी बेच के कम से कम पता तो पड़े कि हम सब का बाप आया है। अचानक आना है, पता के नहीं आएगा। अपना चारों ओर संदेश देने का कर्तव्य अवश्य देखो। Beijo.
आज भी खिटखिट शुरू हो सकती है। अपना फर्ज आस पास का एरिया देख चेक क्यों का

0: अपनी एरिया को चेक करो रायगढ़ के पड़ोसी से। उस द्वारा कराओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे समन संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी आवे संपर्क में, संबंध में भी, कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसको और कोई खातरी नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। ये जो यहां भंडारे में बनती है वो नहीं, दिल खुश कर दो तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश, वो भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Stop.

Cabrón.

Chicano. I'll fit you, man.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: भक्त ने देखा कि कमजोरी देती तो लेकिन फिर वापस ले जाने देखो वो वापस नहीं आता।
2: ये वापस क्यों लेते
1: Violet. El patata que te va a pasar.
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा पूछते हैं, वो तो

0: Brahma nem desante. Arcoe nem desante. Yeto kuch bhi nahi hai. Yeto real sal hai. Real to aane wale. Uski real sal aapko bhi paap jas samay karana.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे दो है, चाहे चार है, चाहे बारह है, लेकिन दो का भी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों